0: Mitakubau limu duki od lonyo paspik. Dano do javu no gente waho. Iyub me od lonyo paspik. Ma biru botin nino duju. Jawa ki jawa no dano. Tika loy chilling o duk. Jo waki mu duju do yabu bau limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving ready. What did you? Hello, speak FM. Very good indeed. Okay.
2: Hello.
1: Ay, ay, ay. I'm going to go to the hospital. I live near a bit.
3: Hello?
1: Wek chimi ko bid on. ओके टेलीफोन में मेगी नोकिया आशा नोकिया नी को बेटो को ऑन चेर वार मियो पे लाउ पे पार के टाइप ची मोगे कैन कुने टिकी मोटोरोला सी 113 कुने टिकी एरिक्सन कुने टिकी नोकिया आशा कुने टिकी सैमसंग गैलेक्सी कुने टिकी टाइप ची मो कैन वागे लोनी कुनो एप्पल फोन कुने टिए मोनो की टेक्नो i2 कुने टिए मोनो की 1110 i टिकी टाइप ची मो चालो 3300 आई टिकी कबीरिटी Amia mera chante amia botina tika nerone dakika bichel ke ken lawin radio dakika bichel